0: இனிமை பாடும் இந்த இனிய வேளை இரவு 8 மணி. இது உங்கள் உள்ளங்களோடு உறவாடும் தருமபுரி பண்பலை 102.5, ஏற்காடு பண்பலை 103.7. நேயர்கள், இனி தொடர்ந்து கேட்கலாம் சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகத்தின் நீதித்துறை சார்ந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியை.
1: We bring you a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: जब तक एक इंडिविजुअल ये नहीं समझता कि मुझे मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है या मुझे किसी से कनेक्ट करना है, तब तक नेक्स्ट स्टेप आता ही नहीं है. We do not then talk about what rights he has or what where he can go. जब भी हम अक्सर स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ, whether he is healthy or not, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं कि नहीं, एंड वी यूजुअली इग्नोर दैट द मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट एंड द सोशल. सो WHO has identified that mental health is integral to health. So when we are talking about mental health, what is mental health? It's a complex process. क्या हम समझ पा रहे हैं मेरे साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ में कितने सारे पड़ाव पड़ते हैं, आर वी एबल टू कोप अप विद दोज थिंग्स, आर वी प्रोडक्टिव डिस्पाइट हैविंग टू फेस वेरियस चैलेंजेस इन लाइफ. सो इफ वी आर एबल टू डू सो, वी वुड से दैट आई एम मेंटली हेल्दी, आई एम एबल टू डील विद माई मेंटल हेल्थ एडिक्वेटली. देयर आर वेरियस सिचुएशंस इन लाइफ, वेदर इट इज एट वर्क प्लेस, फैमिली, whether how we are connecting with other individuals, whether we are facing some legal battle or we are having shortage of funds, someone in the family is ill, or home environment or the school environment or the workplace is having problems. So in sab cheezon ko leke hum some individuals may feel stressful, some individuals may feel that this is part of life. To hamare reactions alag alag hote hain. And at the same time, we need to understand that some amount of stress is important to drive us to face those challenges. Agar hamare paas ek bacche ke samne exam ho hi nahi, to wo padega hi kyun? To exam ek tarah se uske liye stress bhi create karta hai, par dusre perspective se usko ek challenge bhi milta hai ki mujhe aage seekhna hai. But at the same time, after a certain amount of stress, we become dysfunctional. जिसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए एंजाइटी देता है, घबराहट देता है, एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग देता है. दैट इज द टाइम व्हेन वी नीड टू सीक हेल्प. इफ वी आर एबल टू फेस द स्ट्रेस एडिक्वेटली, वी आर फाइन. बट इफ वी आर नॉट एबल टू फेस द कोपिंग, वी आर नॉट एबल टू फेस दोज चैलेंजेस, देन वी स्टार्ट हैविंग हेडेक हो रहा है, मुझे बहुत थकान लगती है, मेरे को नींद नहीं आ रही है. सो दीज आर सम ऑफ द साइंस एंड कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम्स, वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल इश्यूज, क्योंकि अक्सर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी फिजिकल का नाम देते हैं. हमें महसूस यही होता है कि हमारे शरीर में थकान है, बट एक्चुअली द कॉज मे बी एट द मेंटल लेवल. ये कहना कि कब उदासीपन, डिप्रेशन, मतलब एक क्लिनिकल डिसऑर्डर बन जाता है, एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है, बहुत कोई डिमार्केशन नहीं है. जनरली वी से दैट इफ इट इज परसिस्टेंट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ सैडनेस डिप्रेशन, व्हिच इज वेरी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, एंड इट इज सैडनेस या डिप्रेशन इज कॉमनली यूज्ड वर्ड अमंग द पब्लिक. सो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दीज साइंस? जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम शारीरिक कंप्लेंट्स देते हैं, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का, मेरा कोई नींद ठीक से नहीं आती, या मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, या मेरा मन नहीं करता है खाना खाने को. सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल सोमेटिक कंप्लेंट्स दैट इफ वन इज फीलिंग दैट और वन इज रिपोर्टिंग, वी नीड टू टेक इट सीरियसली.

0: Some of the behavioral signs include, there is a sudden, parents आके कहते हैं कि कई बारी पता नहीं बिना provocation के, बिना कोई किसी context के irritable हो जाता है, वापस जवाब देता है, या unnecessarily shopping आजकल हो रही है, extremes of behavior which was not there earlier. So any change over the time which is not there, which is not acceptable by the family, that means there is some, this behavior needs to be attended to. At a social level, we don't want to interact with people, we don't want to respond to people, respond to family members. छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम नर्वस हो जाते हैं. समटाइम्स वी से दैट मुझे लग रहा है कि बस जिंदगी का अंत आ गया है. सो दीज काइंड ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज ऑल्सो आर अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड मे बी एन इंडिकेशन फॉर मेंटल इलनेस. सो मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो इररिस्पेक्टिव, दे कैन बी, दीज साइंस कैन बी ड्यू टू सम फिजिकल इलनेस एंड दीज कैन ऑल्सो बी साइन फॉर सम मेंटल इलनेस. हमारे रोज के रोजमर्रा का जो रूटीन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं. बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, कॉलेज जाने में छुट्टी अक्सर आ रही है, हम वर्क प्लेस से कोई ना कोई बहाना लेके जल्दी वापस आ जाते हैं, वी आर नॉट ईटिंग वेल, आई गेट अप इन बिटवीन एट नाइट, और देयर इज़ अ चेंज इन माई इंटरेक्टिव. पहले बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन होती थी, अभी मैं, मेरा मन नहीं करता है. सो दीज आर ग्रॉस साइंस विच मे बी ड्यू टू एनी रीजन, but they are important to be picked. Some signs are specific to a particular disorder. ये सब common बीमारी है. बहुत ज़्यादा checking होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत गंदा हूँ तो बार बार नहाते हैं, या बहुत ज़्यादा hand washing होती है, तो OCD, obsessive compulsive disorder. बच्चों में अक्सर स्कूल से रेफरल आते हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा, वो 7th क्लास में पढ़ रहा है पर उसको अभी तक सेंटेंस बनाना नहीं आता, उसकी स्पेलिंग में एरर्स बहुत हैं, या मैथ्स में वो 2nd क्लास का परफॉर्मेंस है. स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, तारे ज़मीन पर हम सब ने देखी है, एंड दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉट दिस इज अबाउट. मैनी टाइम्स अनलाइक अदर इलनेसेस, पीपल डू रिपोर्ट मेरे को बहुत डिप्रेशन रहता है. इट शुड बी टेकन सीरियसली, इट्स अ क्राई फॉर हेल्प दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल. अक्सर देखा गया है कि इंडिविजुअल्स हु डू ट्राई टू कमिट सुसाइड, दे डू से, दे वर्बलाइज देयर प्रॉब्लम्स, देयर हेल्पलेसनेस एंड दे सीक हेल्प, विच वी मोस्ट ऑफन इन आवर पीयर ग्रुप्स वी डू नॉट रिकॉग्नाइज लेटर ऑन, अरे उसने तो ऐसा कहा था. समटाइम्स इंडिविजुअल रिपोर्ट मुझे कुछ सुनाई देता है, हम हंस के उड़ा देते हैं बात को. दिस मे बी साइंस फॉर साइकोसिस. समटाइम्स वी से दैट बहुत एंग्जाइटी, बहुत घबराहट हो रही है, तो मुझे लगता है कुछ मिनट को लगा कि मेरा तो अंत आ गया, इट मे बी अ पैनिक अटैक. सो वी नीड टू सीक हेल्प रादर देन फेस दैट मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे तो मैं नहीं जाता हूँ दिखाने. एट टाइम्स इफ इट इज पॉसिबल तो टीचर्स सेटिंग में या पेरेंट्स जो एजुकेटेड हैं, वी हैव स्मॉल स्मॉल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चनेयर विच कैन एक्चुअली टेल यू कि ये इस 10 आइटम्स में से इतना कट ऑफ 2 के ऊपर है, दैट मीन्स यू नीड टू कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. PHQ GAT 7 आइटम 9 आइटम्स, इट्स हार्डली एनीथिंग, वेरी सिंपल आइटम्स विच कैन बी यूज्ड इन कम्युनिटी.
1: You had been listening to a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. We slip into a short break.

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on mental health and access to justice, care and human dignity by Dr. Rachna Bhargava, Professor Clinical Psychology, AIIMS Delhi.
2: ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स में एडल्ट की प्रॉब्लम्स होती है। इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड वर्ल्ड वाइड दैट मोस्ट ऑफ द मेंटल इलनेस दे हैव देयर ऑनसेट इन द एडोलेसेंट एज। दैट्स व्हाई वी एम्फसाइज कि बच्चों में और एडोलेसेंट्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक द साइंस अर्ली सो दैट वी कैन प्रिवेंट एनी सीवियरिटी ऑफ मेंटल इलनेस। हेल्प सीकिंग